नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
1: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
2: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
5: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
6: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
8: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 150

0: पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
3: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete with cultural performances. Thousands of Indian nationals and people of Indian origin are expected to gather in the venue, describing the visit as a matter of pride and an opportunity to strengthen their connection with the motherland. Shondipan Dashgupta, Jakarta, Indonesia.
2: In the second leg of his tour, Mr. Modi will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit where he will participate in the

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड मॉर्निंग मुंबई, 8:40 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना और हमारा प्रोग्राम मस्त मुंबई शुरू हो चला है। और आज हम किस बारे में बात करेंगे, बातें होंगी, लेकिन उससे पहले इस अगले गाने की शुरुआत करते हैं। बारिश का मौसम है, आप सब या तो अपने घर पर होंगे क्योंकि छुट्टी मिली होगी, या फिर मेरी तरह आप ट्रेन में ट्रैवल करते करते आए होंगे, पर टेंशन नहीं क्योंकि गानों का साथ, बारिश का मजा एक साथ उठाएंगे, आप भी काम पर, हम भी काम पर। तो चलिए अगला गाना किशोर कुमार की आवाज में।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: 8:45 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 107.1। मेरे आरजे भावना के साथ प्रोग्राम चल रहा है मस्त मुंबई, और आज इस मस्त मुंबई में बात करने वाले हम, दो दिन पहले मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी, रिपोर्ट नहीं एक्चुअली न्यूज़ ही कह लीजिए, हम इतना स्क्रॉल करते हैं, आए गए बहुत सारी चीज़ें हमारे कानों तक पड़ती हैं, दिखती हैं, इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि तकनीकी चीज़ें यानी टेक्नोलॉजी, डिजिटली हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि पुरानी चीज़ों को हम पीछे छोड़ते आए हैं। वेल, ये चीज़ कितनी सच है? लिखा तो ये भी गया था एक रिपोर्ट में कि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, यानी अब किसी वीडियो पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड या शायद उससे भी कम रुकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, यानी स्क्रोलिंग, इसे डूम स्क्रोलिंग भी कहते हैं वैसे। लेकिन जरा सोचिए, चाय की पहली चुस्की के साथ जो आवाज कानों में घुलती है वो स्क्रोल कहाँ होती है? वो तो सीधे दिल तक पहुंचती है, बिना रीटेक, बिना फिल्टर। इसी अपनेपन के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में।

0: कभी कभार हमें शर्माना छोड़ देना चाहिए, क्यों?
1: आपके दिल की हर
0: 8:53 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेरे आरजे भावना के साथ। वेल, आज जब मैं आ रही थी रास्ते में, तब दो गाड़ियां रास्ते पर ऐसे ही पड़ी हुई थी। ऑफ कोर्स आंधी चल रही है, तूफान है, हवा तेज है, बारिश का मौसम है, होता है अक्सर। कभी रास्ते पर गाड़ियां आपको गिरी हुई दिखेंगी, कभी कोई प्लास्टिक आपको शायद रोड पर मिल जाए, कभी कोई शायद लकड़ी का टुकड़ा बीच में गिरा हुआ मिल जाए, पेड़ गिरे हुए मिल जाए। कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं जहां पर वो पब्लिक स्पेस है, तो अगर कोई ऐसा सामान है जो आप खुद हटा सकते हैं तो उसे प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे आप साइड में रखें। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप किसी अथॉरिटी को ढूंढिए, उस अथॉरिटी को आप बताइए कि यहाँ पर वो चीज़ है जिसके वजह से शायद आम आदमी को या फिर राह चलते इंसान को दिक्कत हो सकती है। इतना तो हम कर ही सकते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्यों? वेल, आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास। लेट मी ऑल्सो टेल यू, दीपा पालकर जी कह रही हैं कि विक्रोली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जी हाँ, ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर हुआ है IMDB की तरफ से, सो ऑफकोर्स प्लीज़ ध्यान रखिए आप, और हो सके तो अपने घर पर आप सुकून से बैठें। अगर आप घर पर नहीं हैं, बाहर हैं, तो कोशिश कीजिए कि ऐसी कोई जगह पर ना जाए जहां पर पेड़ गिरने के चांसेस हो या फिर बिजली की तारे हों, दूर रहें उनसे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहते हैं ना। और अलोंग विद दैट, स्नेहा वराली से हमें मैसेज कर रही हैं, गुड मॉर्निंग, आज बारिश है तो बारिश के गाने हो जाएं। वेल, बारिश के गाने तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ और मज़ेदार गाने भी लाई हूँ आपके लिए, तो वो भी सुनेंगे। पंकज माहौर, प्रमोद चिंचोलकर, फिरोज सिगनपुरिया, विश्वास चांदोरकर, प्रणव शिंदेव, राकेश माथुर पूना से, रजनीकांत पाटिल वाधवन, श्रेया राउत, मिलेश गजानन, श्रेया मिलेश राउत, आर्य मिलेश राउत, टिघरे पाड़ा, गणेश पाटिल वाधवन, शुभदा जी, विजेंद्र घाटोल अकोला से, आर्यन सोमवंशी जलगांव से, प्रदीप अनंत कृष्णन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड वी ऑल्सो हैव 30301 ये लास्ट डिजिट है। हमारे साथ इमरोज भी हैं फ्रॉम नवी मुंबई, एंड वी ऑल्सो हैव ईशान। वेल, इन सभी के लिए चलिए अगला गाना प्ले करते हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 9:01 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विथ मी आरजे भावना। मस्त मुंबई प्रोग्राम चल रहा है और हम बात कर रहे हैं अटेंशन स्पैन की, यानी अटेंशन स्पैन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी आपके अटेंशन स्पैन किस तरह इम्पैक्ट होते हैं। आजकल वैसे तो हर चीज व्यूज और लाइक्स में मापी जाती है। सुबह जो ट्रेंड पर टॉपिक होता है शाम तक उसे भुला भी दिया जाता है, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन हर सुबह की ताज़ा हवा या कोई जानी पहचानी धुन, इनका कोई एल्गोरिदम नहीं होता है। असली जुड़ाव वो नहीं जो 5 सेकंड में स्क्रॉल हो जाए, असली जुड़ाव वो है जो हर सुबह बिना किसी शर्त के आपके साथ रहे। वेल, बने रहिए क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है।

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: 9:15 हो रहे हैं, आप सभी के मैसेजेस भरपूर आ रहे हैं, तो माफ़ी चाहूँगी अगर कुछ मैसेजेस रह जाएं, लेकिन हाँ कोशिश यही है कि आप सभी के मैसेजेस के रिप्लाई दे सकूँ मैं। अलॉन्ग विद दैट लेट मी ऑल्सो टेल यू, मंडे है आज और वैसे मंडे लग नहीं रहा है। मुंबई की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी जगह पर वो हालात नहीं है जैसे ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर कहा गया है। और इसी बात पर आपको सुनाती हूँ अगला गाना, क्योंकि अगर आप घर पर बैठे हैं या फिर शायद आप दफ्तर में हैं इस वक्त, आपके लिए अगला गाना सुकून के साथ चाय की चुस्की लेते लेते सुनिए। और गाने के उस पार आपसे बात करेंगे हम डिजिटल फटीग और डिजिटल डिटॉक्स की, आखिर ये होता क्या है और इससे इतनी परेशानी क्यों है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए है क्यों आखिर।

वेल, हमारे साथ दीपाली शिरोडकर जुड़ी हैं, हमारे साथ इमो भी है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं. वी हैव विशान फ्रॉम असनसोल वेस्ट बंगाल, एंड वी ऑल्सो हैव देविदास सनावनी, दीपा पालकर, अंजू अंधेरी ईस्ट से, श्रेया राउत, किशोर नायक, पंकज माहौद, प्रमोद कारखानिस, विजेंद्र घाटोलकोला से, एंड वी ऑल्सो हैव सुनील गायकवाड़. ये हमें पूना से सुन रहे हैं, सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़, और बारिश में चाय के मज़े ले रहे हैं. ओहो हो, क्या बात है, चाय तो हमने भी पी. हमारी जो पहले आरजे थी पूर्वा, उन्होंने भी हमें चाय की चुस्की दिलाई थी. अरे, बारिश में चाय हो जाए तो बड़ा मज़ा आता है कि नहीं, गर्मा गर्म चाय. वेल, विद दैट आपको अगला गाना सुना रही हूँ, दैट इज़ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में. और उसके बाद थोड़ा माहौल चेंज करते हैं, बारिश का मज़ा ले रहे हैं लेकिन साथ ही साथ थोड़ा इन्जॉयमेंट तो बनता है, इतनी सुस्त मॉर्निंग तो बिल्कुल नहीं चलेगी. तो चलिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना सुनिए और उसके बाद मूड को थोड़ा करते हैं अपबीट.

9:24 ऑन द क्लॉक. और जब आजकल हम ट्रेंडिंग टॉपिक की बात सुनते हैं तो अक्सर डिजिटल फटीग, डिजिटल डिटॉक्स की बात होती है. कई बार मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए, यार बहुत सोशल मीडिया देख लिया है, आज पूरे दिन फ़ोन यूज़ ही नहीं करने वाले. वेल, आपके पास ऑप्शन तो हमेशा से था, तो फिर एक दिन आप अगर फ़ोन यूज़ ना करें तो ये आपके लिए इतना टास्क क्यों लगता है? क्योंकि आपके पास हर एक चीज़, हर एक सुविधा है. जैसे आप बार बार जब स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखें थक जाती है और आपकी आंखों को आराम चाहिए, इसीलिए तो आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, यानी कि फोन से छुट्टी, स्क्रीन की तरफ बिल्कुल ना देखें. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जहां पर स्क्रीन्स हुआ ही नहीं करती थी. तब लोग क्या करते थे, सोचिए जरा. तब यही होता था, आवाजें सुनते थे लोग, दिल की धड़कने, दूसरों की, अपनी, और कभी कभी इस रेडियो के जरिए हमारी और इन कानों के जरिए एक दूसरे की. वेल, सबसे आसान तरीका हमेशा से हमारे पास था, स्क्रीन बंद करो और बस सुनो, आंखों को आराम और दिल को सुकून. क्यों? वेल, आपको अगला गाना सुनाने वाली हूं. ये सभी लोगों के लिए है जो हमें मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट तो ऑफ कोर्स शायद मुश्किल होगी पूरी करना. लेकिन हाँ, फिरोज सिकंदपुरिया जी कहते हैं कि उनके व्हाट्सएप पर म्यूजिक लवर्स की ग्रुप है, एक कम्युनिटी बनती है ना जो गानों की, वो बेमिसाल होती है, क्योंकि गाने सरहद पार से लोगों को जोड़ते हैं. और इसी मजबूत जोड़ के लिए ये अगला गाना बारिश के मजे लेते हुए सुनते हैं, फ्रॉम द फिल्म 1942 अ लव स्टोरी.

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

9:37 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना, और जहां प्रोग्राम चल रहा है मस्त मुंबई ओनली ऑन एफएम रेनबो आकाशवाणी एफएम रेनबो। वेल, वर्चुअल दुनिया में हर फोटो हर वीडियो कई फिल्टर्स के बाद नजर आती है और सब कुछ परफेक्ट दिखने की कोशिश में, लेकिन ज़िंदगी में हर खूबसूरत पल बिना किसी फिल्टर के होते हैं। बिल्कुल हमारी बातचीत की तरह, जैसा है वैसा, सीधा और असली, जहाँ पर अगर मीठी बातें हैं तो शायद कभी खटास और कड़वाहट भी, लेकिन हाँ बातचीत चलती रहती है। तकनीक बदलती रहेगी पर एक सच्ची आवाज़ का जादू कभी पुराना नहीं पड़ता। आप टेक्नोलॉजी से सहूलियत तो ढूंढ लेंगे, लेकिन आपका दिल जो है वो सुकून फिर भी पहाड़ों की तरफ ही लेकर जाएगा।

आप शायद महंगे से महंगे फोन ले लीजिए, लेकिन कहानियां दादी और नानी की ही सुनाई देनी। कहते हैं ना कि आपका दिल जो चाहता है शायद वो आप ही पूरा कर सके, कोई टेक्नोलॉजी उसे शायद पूरा ना कर पाए। हाँ, जिंदगी आसान बना सकती है, लेकिन सुकून, सुकून तो यहाँ है इन गानों के साथ।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्ते लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: वेल, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन सिंप्लिसिटी और डायरेक्ट कनेक्शन की जगह कोई ऐप नहीं ले सकता। चाहे आप कितने भी मैसेजेस करें, लेकिन चाय के साथ बातें या फिर शायद कॉफ़ी पर ही सही, लेकिन खाते खाते चाय पीते पीते बातें करना, ये कभी भी ओल्ड फैशन नहीं हो सकता। आंखों में आंखें डालकर किसी से अपने दिल की बात कहना, ये कभी पुराना नहीं हो सकता। ये कोई मैसेज में तो वो बात नहीं आ पाएगी। वेल, शिकायत नहीं है, पर हाँ, एक भरोसे का जश्न जरूर है कि चाय की चुस्की लेते रहिए। और ये मत भूलिएगा कि कनेक्शन हमारा आपके साथ बना ही हुआ है। चाहे लक, टेक्नोलॉजी हमें कभी कभी दगा भी दे जाए, लेकिन हमारा कनेक्शन इस टेक्नोलॉजी के भी परे है। आपने हमें याद किया और हम आ जाते हैं। आपने जो गाने सोचे वो यहाँ कभी कभी बज भी जाते हैं। वेल, यही तो है रियल कनेक्शन। 10 बजने वाले हैं और होगा समाचार का वक्त, और उस पर नमस्ते भारत यानी मस्त मुंबई प्रोग्राम बस यहीं तक। लेकिन आप बने रहिए, क्योंकि गाने चलते रहेंगे और मैं भी आपके साथ 11 बजे तक हूँ। सो कीप लिसनिंग FM Rainbow 107.1, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: 10 बज चुके हैं, आइए एक नजर डालते हैं आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत इस घंटे के प्रमुख समाचारों पर। आईएमडीबी ने सोमवार के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में आज सभी सरकारी, म्युनिसिपल और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वो 2 दिन की यात्रा पर आज शाम इंडोनेशिया पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। बात अब खेल जगत की। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए। उनके संन्यास से ब्राजील फुटबॉल के सर्वाधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत हो गया है। अब बात क्रिकेट की। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। इंग्लैंड के 151 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में 3 विकेट पर 153 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेथ मुनी ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। फोबे लिचफील्ड ने 48 रन बनाए। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। दस बजकर 2 मिनट हो रहे हैं एग्जैक्टली ऑन द क्लॉक और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 म्यूजिकली आवर्स विद मी आरजे भावना। वेल, मस्त मुंबई कैसी है? मस्त मुंबई तो ऑफ कोर्स मस्त है, लेकिन अफसोस थोड़ी बारिश जो है वो कहीं ना कहीं ऑरेंज अलर्ट जैसे कि आपने सुना दिक्कत तो दे रही है, लेकिन जरूरी भी है। अब हम मस्त मुंबई से ट्रांजिशन करते हैं नमस्ते भारत की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले हमारे भारत के बारे में और उसकी सबसे खास बात किस तरह हम विविधता में भी एकता ढूंढ लेते हैं। वेल, ये तो बहुत ही पुराना हमें प्रोवर्ब लगता है, बहुत टाइम से हम सुनते आए हैं, बोलते आए हैं, लेकिन आज भी उतना ही बरकरार है। ये बस हम भूल चुके हैं कि आखिर हमारे आसपास या हमारे बीच ये एकता है कहाँ। वेल, बात करेंगे और भी, लेकिन उससे पहले अगला गाना आपके लिए।

देश के कोने कोने में बैठे सभी लिसनर्स को वेलकम एंड गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं है प्रीत जहां की रीत सदा. हमारे देश की खूबसूरती यही है कि हर कदम पर भाषा बदलती है, स्वाद बदलता है, पर लोगों के दिल कभी नहीं बदलते. डिजिटल दुनिया हमें भले ही अलग अलग बबल्स में बांट दे, पर एक अनोखा धागा ऐसा है जो हम सबको एक ही धुन पर जोड़ता है, और उनमें से एक धुन है गाने. और मुझे लगता है दूसरी जो चीज़ हमें जोड़े रखती है वो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे तो खाने की कितने मतलब वेल यू नो मेरी वीकनेस है यार खाना. तो हाँ, गानों के साथ खाना जो है ये भी हमें जोड़ता है. इसी एहसास के साथ चलिए अगला गाना आपको सुनाते हैं.

0: आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: 10:15 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स विद मी आरजे भावना, जहां प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते भारत। वेल, हमारे देश में खुशियां अकेले नहीं, साथ मिलकर मनाई जाती हैं। तभी तो कोई भी त्योहार हो, कोई भी फंक्शन हो, हम सब इकट्ठा होते हैं। और ये चीज हम कितने भी कस्टमाइज कर ले इंटरनेट पर, सारी प्रिपरेशन कर ले, तैयारियां कर ले, चाहे कितने भी मैसेज में ग्रुप्स बनाकर हम सब कुछ डिस्कस कर ले, लेकिन जो बात शादी के माहौल में कजिन्स इकट्ठा होकर एक दूसरे के फैमिली के बारे में जितनी शिकायतें कर सकते हैं, वो शायद ऑनलाइन में ना आए। या फिर किसी त्योहार में, किसी और की शादी में जाकर बाराती बनकर खाना खाने में जो मज़ा है, वो शायद ऑनलाइन आपको ना मिले। यही तो बात है, आप इन त्योहारों को जब तक जिएंगे नहीं ना, वो ऑनलाइन आपको पढ़कर या फिर सिर्फ रील देखकर मज़ा नहीं आने वाला। इनमें जीना सीखिए। उस बात में जो बात है वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाली। और आपको पता है, असली मज़ा तब है जब पता हो कि यही बात इस पल आपके साथ देश के हजारों कान एक साथ सुन रहे हैं। कहीं कोई गांव का किसान, तो कोई मुंबई लोकल में सफर करता हुआ नौजवान। कमाल की बात है ना। आप एक गाना रिक्वेस्ट करते हैं और वहीं पर, यकीन मानिए, सच कह रही हूँ, और 3-4 मैसेजेस आते हैं कि अरे मैं तो यही रिक्वेस्ट करने वाला था या करने वाली थी। ये जो कनेक्शन है, शायद आपको पता ही नहीं कि आपका ये कनेक्शन कितनी जगह और कितने लोगों से जुड़ रहा है। यही तो एहसास है जो आपको ये जरूर यकीन दिलाएगा कि आप कभी अकेले नहीं, आपके साथ हमेशा कोई ना कोई आपके जज्बात शेयर जरूर करता है।

10:27 ऑन द क्लॉक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्यन सोमवंशी जलगांव से, गणेश पाटिल वाधवन, राकेश माथुर पुना से, स्नेहा वराली से, विश्वास चांदोरकर, एंड वी हैव वंदना सूर्यवंशी कड़वा थाने से, वी ऑल्सो हैव श्री प्रकाश वाघ पुणे से, एंड वी ऑल्सो हैव वासुदेवन बदलापुर से. गुड मॉर्निंग आप सभी को. सुनील गायकवाड़ हमारे साथ जुड़े हैं अलॉन्ग विद सुषमा राजवीर अनन्या गायकवाड़ जो बारिश में चाय के मजे ले रहे हैं. अलॉन्ग विद हिम हमारे साथ इस वक्त हमें सुन रहे हैं मिहिर ओटावकर ओल्ड पनवेल से. देख रहे हैं आप, कह रही थी ना मैं आपसे कि आपको लगता है सिर्फ आप हमें सुन रहे हैं लेकिन दुनिया के कोने कोने से आपके साथ जिस तरह आप गाने के मजे ले रहे हैं वैसे ही बाकी भी आप ही के पसंदीदा गानों की तरह अपने घर बैठे बैठे वही महसूस कर रहे हैं जैसे आप महसूस कर रहे हैं. सुकून, खुशी, मुस्कुराहट चेहरे पर जो आती है गाने सुनकर. सुकून. वेल, अलॉन्ग विद दैट हमारे साथ जुड़े हुए हैं देविदास सुनावने एंड अंजू अंधेरी ईस्ट से, प्रमोद चिंचोलकर, प्रमोद खारखेनिस, सुरेश काशीनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश काशीनाथ पाटिल एंड अविनाश दामोदर कड़ू टिगरेपाड़ा से वाड़वन, एंड वी ऑल्सो हैव दत्तात्रेय आदत वेलापुर से. बहुत सबसे बारिश लगातार चल रही है, मौसम अच्छा है वेलापुर में. महेश बोहारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ मौसम कब मेहरबान होगा, कब बरसात होगी, अजमेर राजस्थान से हमें ये मैसेज कर रहे हैं. वेल, फिलहाल तो गीतों की बरसात में आप भीग रहे हैं तो इसी का आनंद लीजिए और देर नहीं होगी यहाँ पर, टेंशन मत लीजिए. बारिश ज़रूर आपकी तरफ हम भेज रहे हैं संदेशा लेते हुए कि आप तक पहुँचे और आपके दिलों में वही सुकून लेकर आए जो यहाँ की बरसात ला रही है. विजयलक्ष्मी शेट्टी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी कह रही हैं हमसे, वी लव सुडोकू क्रॉसवर्ड इन द मॉर्निंग, नो टचिंग फोन एक्सेप्ट टाइपिंग मैसेज टू यू आर जी.

0: वेल दैट्स द लव विजय लक्ष्मी जी, आपका प्यार ही तो हमें बस चाहिए, और क्या बारिश की बरसात हो और आपका प्यार बरसता रहे. और हाँ, साथ में चाय, ऑफ कोर्स चाय के साथ साथ नाश्ता भी तो चाहिए होगा. वेल, इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा हम अलग रखते हैं. ममता महेश भाटकर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फिरोज सिगनपोरिया विथ हिज ग्रुप वर्ल्ड म्यूजिक लवर्स. वी ऑल्सो हैव शंकर शिरोडकर डोंबिवली से जो हमें सुन रहे हैं. और वेल, काफ़ी न्यू लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं. शुभदा जी, देखिए यही एक चीज़ है, बारिश में हर एक चीज़ आपको धोखा दे सकती है, लेकिन बारिश में जिस तरह आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस मौसम को देखिए और गाने सुनिए. हाँ, बीच बीच में हमारी आवाज़ें भी आती हैं, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको या तो आपके चेहरे पर मुस्कान लाती होंगी या फिर आपके दिलों में सुकून. वेल, अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव शुभदा जी, दीपा पालकर, श्रीधर मुराजकर, किशोर नायक. वेल, ये सभी लिसनर्स, लेट मी टेल यू, ये सब सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अजय साखरे इंदौर से, वी ऑल्सो हैव प्रसन्ना फ्रॉम मुलुंड, रियासत हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हैं जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, बड़ी प्यारे नाम है यार. विजेंद्र घाटोला कोला से, विठल मुंगा से हमारे साथ जुड़े हैं श्रेय राउत, मिलेश गजानंद राउत वाढ़व, एंड वी ऑल्सो हैव इमो, प्रणव शिंदे, प्रदीप अनंत कृष्णन, महेश भटकर सांताक्रूज से, पंकज माहौड़, एंड बाकी नाम बताऊंगी, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक.
1: रेस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित.
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए.
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.

वेल, आज आपके पास हजारों फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं, पर दिल से बात करने वाला अपनापन कहीं खो गया है, क्यों? वेल, आप हालचाल पूछ लेते हैं, हाय, हेलो, कैसे हैं आप, और आपको जवाब भी वही मिल जाए, मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? पर क्या असल में वो बढ़िया सच्चा है? आप किसी की आवाज़ से पहचान सकते हैं कि वो इंसान कैसा महसूस करता है अगर वो आपकी बेहद करीब है, और अगर नहीं तो उनकी आंखों में देखकर। इसलिए तो कहते हैं कि आसपास या सामने जिनका दीदार हो वो शायद ऑनलाइन पर वो बात ना बने, पर हाँ, नुकसान भले ही ना हो लेकिन फायदे भी बहुत हैं। जैसे कि ऑनलाइन या फिर फोन पर आप कनेक्ट तुरंत हो सकते हैं। शायद कोई साथ समुंदर पार हो और इंतजार कर रहा हो किसी का, उनके लिए ये दूरियां जरूर कम हो जाती है। और इसी के टोटल ऑपोजिट, वो आवाज जो हर सुबह बिना किसी शर्त के आपकी गाड़ी में, आपकी दुकान में, आपके घर में गूंजती है, वो बिना बनावट के परिवार का हिस्सा बन जाती है और सदियों से बनती आई है। और अगर ये जानकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है तो मुस्कुराते रहिए, इसमें कंजूसी की बात नहीं है। वेल, इसी के साथ आपसे मुझे एक सवाल भी पूछना था। आजकल बहुत बातें चल रही है वैसे, और इसी बात में एक सवाल मेरे मन में भी आया तो सोचा आपसे साझा कर लूं। आप बताइए, आप अगर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वेल, आपके मैसेज अगर आए हैं तो मैंने आपके मैसेजेस पढ़े हैं, लेकिन कई लिसनर्स ऐसे भी हैं जो हमें मैसेज नहीं कर पा रहे, तो अगर आपके पास फोन है तो 8657661071 पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, और मुझे मेरे सवाल का अगर जवाब आपके पास हो तो ज़रूर बताइए कि आपके लिए रेडियो का मतलब क्या है। सबसे पहला गाना आपने रेडियो पर कौन सा सुना था? दैट्स राइट। चलिए, आज अलमारी जो है यादों की खोल दीजिए और बताइए आपका सबसे पहला रेडियो एक्सपीरियंस कौन सा था। और आई एम श्योर रेडियो ऐसी एक मीडियम है जहां सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट या फिर एक सुकून तो जरूर आया होगा। वो पल प्लीज शेयर कीजिए, मैं जानना चाहती हूँ, ये दिल से रिक्वेस्ट है। आई नो आप सबकी रिक्वेस्ट हमें आती रहती है अक्सर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जाए। वेल, आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी करें, तब तक ये अगला गाना आपको सुनाती हूँ। कीप लिसनिंग एंड एंजॉयिंग।

0: चलिए आपसे मिलती हूँ बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: 10:45 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स। मैंने आपसे आपकी एक पहली मेमोरी पूछी थी रेडियो को लेकर, कि आपने जब पहली बार रेडियो सुना, पहली बार आवाज़ एक छोटे से डब्बे से आते सुनी, गाने चलते सुने, तो आपका रिएक्शन क्या था, आपने कब वो पहला एक्सपीरियंस रेडियो का महसूस किया। वेल, आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मेरी रिक्वेस्ट मान रहे हैं, जिस तरह मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट कोशिश करती हूँ। मुझे लगा कि आप शायद गुस्सा हो जाएं कि आप हमारी रिक्वेस्ट तो प्ले नहीं करती, हम भी आपकी रिक्वेस्ट क्यों माने। वेल, मैं यहाँ पर जितने मैसेजेस पढ़ रही हूँ, मैं अभी भी आपके प्यार से इतनी ज़्यादा भर चुकी हूँ कि आपके मैसेजेस अभी भी बहुत सारे अनरेड पड़े हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप सभी के मैसेजेस का रिप्लाई दूँ। यकीन मानिए, आप सबका प्यार जिस तरह आ रहा है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स वेरी फुलफिलिंग। फिरोज सिकनपुरिया जी ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं, मैं सबसे पहले मैंने गाना गोल्डन एरा की मशहूर फिल्म अनमोल घड़ी का गाना सुना था। गाने के बोल हैं, आवाज़ थे कहाँ है, सिंगर नूरजहां और सुरेंद्र, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद के गाने थे, और उस ज़माने में हीरो हीरोइन को खुद को गाना गाना पड़ता था, नो प्ले बैक। वेल, दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी, अपने दिल के करीब की चीज़ आप हमसे शेयर करते हैं। एंड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं कुछ मैसेजेस पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, ऑनर ना सही, आपके मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी। अंजू हमें लिखती हैं कि मैं बचपन से रेडियो सुनती थी, स्कूल में अंताक्षर में पार्टिसिपेट करती थी और रेडियो सुनते सुनते आरजे से बात कर लेती थी, बहुत अच्छा लगता था। एंड फर्स्ट सॉन्ग आपको याद नहीं? वेल, मुझे पता है, मेरा पहला गाना जो था, देखने में भोला है बाबू चिनन्ना, जी हाँ, देवानंद साहब का गाना, और ये मेरे दिल के बेहद करीब है, क्योंकि ये मेरी मॉम रेडियो पर गाना सुन रही थी, मेरी जो माँ है वो रेडियो पर गाना सुन रही थी, और काम करते करते, किचन में काम करते करते रेडियो पर गाना सुनते हुए, और इनफैक्ट अभी भी मेरे पिताजी जो हैं वो घर पर जब कभी बैठे रहते हैं और उन्हें सुकून का वक्त चाहिए होता है, तो रेडियो प्ले होता रहता है और वो अपने रोज़मर्रा के जो घर पर काम है वो करते रहते हैं। कितना सुकून वाला माहौल होता है ना, घर पर एक रेडियो है, वो उस पर गाने चलते हैं, कोई बात करता है और आप अपने रोज़ के काम करते हैं, जैसे आपका साथी हो कोई। वेल, ये मेरी मेमोरी है। और आदर्श कनौजिया हमें कहते हैं कि मैंने पहला सॉन्ग नन्हा मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हो सुना था 9 साल की उम्र में। ओ हो हो, कितनी प्यारी मेमोरी है ये। आदर्श कनौजिया मुंबई दादर से हमें मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। राकेश माथुर जी कहते हैं, रेडियो पर सुना पहला गाना तो याद नहीं, लेकिन हाँ, बचपन में 70s में सबसे पहले बिना का गीतमाला सुनी थी, जो पापा रात को रेडियो पर लगा दिया करते थे। देखिए, यही तो बात है, ये सारी मेमोरीज जो है ना, ये कभी नहीं जाने वाली, ये आपके दिल के कोने में हमेशा एक खास तिजोरी जो है उसके तरह आपने बिठा रखी है, बस इसे ही खोलना है। एंड आई एम श्योर, ये सब सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान, क्या आपके दिलों में भी मुस्कान खिली होगी, क्यों, अच्छा लग रहा है ना सुनकर। यही तो बात है, हर अतीत खराब नहीं होते, कभी कभी पीछे पन्नों को पलट लेना चाहिए, क्या पता आपके पसंदीदा चीज़ें आपको नजर आ जाएं। रजनीकांत पाटिल हमें कहते हैं कि पहला गाना कौन सा सुना था वो तो याद नहीं, लेकिन हाँ, ये याद है कि मराठी कार्यक्रम है और रेडियो पर आरोग्यमय धन पसंदा हमने पहली बार सुना था। वेल, गाने आपको याद ना हो, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जो आपने महसूस किया था उस वक्त, वो आपको अभी भी, वो इमोशन, वो जज्बात ज़रूर महसूस होंगे। तान्हा जिया ना जाए, ओके, राम कुमार गुजरात से हमें लिखते हैं कि उन्होंने सबसे पहला जो गाना था वो हिमेश रेशमिया का गाना सुना था। पंकज माहौर जी का भी मैसेज आया है, 2005 में पहली बार रेडियो खरीदा था, तब उन्होंने पहला गीत सुना था। एंड वी हैव प्रकाश शिंदे जो कहते हैं रेडियो एक ऐसी जादुई आवाज है जो

बिना कुछ देखे भी दिल में यादों और जज्बातों की खूबसूरत तस्वीरें बना देती है। पुराने जमाने से लेकर आज के डिजिटल दौर तक रेडियो हमारे अकेलेपन का सबसे सच्चा साथी रहा है, जो मैंने बचपन से रेडियो सुनना शुरू किया है। थैंक यू सो मच, आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं। अब मैं मैसेजेस थोड़े देर के लिए रोकती हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू, दीपा बालकर, शुभलक्ष्मी मस्तकर, प्रणव शिंदे, धनंजय न्यू मुंबई, विजयलक्ष्मी शेट्टी, एंड वी हैव द नेक्स्ट सॉन्ग प्लेइंग फॉर ईशान फ्रॉम आसनसोल एंड इमो। इन दोनों की रिक्वेस्ट, इन दोनों ने ये गाना डेडिकेट किया है। वेल, यहाँ पर दोस्ती दिख रही है आपको, ये दोनों एक दूसरे को गाना डेडिकेट कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे। वेल, आई लाइक दिस, यही तो है कनेक्शन। वेल, इसी कनेक्शन को सेलिब्रेट करते हुए दो गाने बैक टू बैक एंड विद दी सॉन्ग्स मैं लेती हूँ इजाजत, साइनिंग ऑफ। मैं आरजे भावना आपके साथ, इसी उम्मीद में कि जिस तरह मैं खुश होकर जा रही हूँ कि आप लोगों के दिल में जिस तरह रेडियो का जज्बात अभी तक भरपूर भरा पड़ा हुआ जो सैलाब है, उसे बस थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए, सैलाब को बहने दीजिए। और जिस तरह मेरा दिल इस वक्त खिल उठा है, उम्मीद है कि आपकी जिंदगी भी इन गानों के जरिए और रेडियो के जरिए हमेशा मुस्कुराती रहे। विशिंग यू ऑल द वेरी हैप्पीनेस टू यू, एंड विद दैट साइनिंग ऑफ, मैं आरजे भावना। लेकिन हाँ, बने रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

सुबह के 11:53 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज के समाचार। आईएमडी ने सोमवार के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में आज सभी सरकारी, म्युनिसिपल और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में वे राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रबन्नन मंदिर जाएंगे और भारतवंशियों से भी बातचीत करेंगे। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे हैं। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए। उनके संन्यास से ब्राजील फुटबॉल के सर्वाधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत हो गया है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। इंग्लैंड के 151 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में 3 विकेट पर 153 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेथ मुनी ने सबसे ज़्यादा 64 रन बनाए। फोबे लिचफील्ड ने 48 रन बनाए।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे गंधर्व। स्वागत है आपका ब्रेक फ्री सेगमेंट में। ब्रेक फ्री मतलब बंधनों से मुक्त होना, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ब्रेक फ्री होना, कुछ नया ट्राई करने से पहले अपने अंदर के डर से ब्रेक फ्री होना। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसे लड़के की जिसके बहुत बड़े सपने हैं, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा करना चाहता है, ब्रेक फ्री होना चाहता है। लेकिन ब्रेक फ्री होने से पहले वो इतना ब्रेक लेता है कि पूछो मत। आज तो उसने हद ही कर दी, पढ़ाई शुरू करने से पहले ही ब्रेक ले लिया। अब ये बार बार ब्रेक लेने वाला लड़का अपनी आदत से ब्रेक फ्री कैसे होता है, ये मिरेकल कैसे होता है ये जानेंगे। मगर उससे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक कहानी। कहानी एक लड़के की जो बार बार ब्रेक लेता है। उसे लाइफ में कुछ हासिल करना है, कुछ ब्रेक फ्री करना है, मगर ब्रेक फ्री करने से पहले वो बार बार ब्रेक लेते रहता है। उस लड़के ने अभी डिसाइड किया है पढ़ाई करना। वो पढ़ाई करने से पहले ही ब्रेक लेता है। वो सोचता है माँ ने मिठाई लाई है मार्केट से, वो खा के पढ़ाई करूँगा। फिर खाने के बाद उसे लगता है कि थोड़ी मिठाई खा ही ली है, वैसे भी तो लंच भी कर लेते हैं। वो लंच करने बैठ जाता है। फिर लंच करते करते क्या देखूं, इसलिए टीवी लगाता है। चैनल पे चैनल चेंज करते रहता है। फिर आखिरकार अपने मूड के हिसाब से शो मिल जाता है। फिर उसका लंच ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो शो उसने टीवी पे लगाया है वो ख़त्म नहीं होता। वो सोचता है ये शो खत्म होने के बाद पढ़ाई करूंगा। बाप रे बाप, ये लड़का पढ़ाई करेगा कब? अपने इस ब्रेक लेने की आदत से ब्रेक फ्री होगा कब?

0: आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्व। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। हम बात कर रहे थे एक ऐसे लड़के की जो बड़े बड़े सपने देखता जरूर है, लेकिन सपनों को हासिल करने की पूरी कोशिश ही नहीं करता, बार बार ब्रेक लेते रहता है। आज उसने पढ़ाई करने से पहले ही ब्रेक ले लिया। उसने डिसाइड किया कि माँ ने मिठाई लाई है मार्केट से, वो खा के पढ़ाई करूँगा। फिर खाने के बाद उसे लगा कि थोड़ी मिठाई खा ही ली है, वैसे भी बहुत भूख लगी है, लंच भी कर लेता हूँ। लंच करते करते कुछ तो देखना चाहिए ना, कुछ शो देखना चाहिए। तो शो देखते देखते वो लंच करने लगता है। उसका लंच खत्म हो जाता है पर शो नहीं होता। अब शो खत्म हो जाता है, वो घड़ी देखता है, हैरान हो जाता है कि बहुत वक्त गुजर गया है। उसे पढ़ाई तो करनी है मगर उसे सही मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा। अब शाम के 6:30 बज चुके हैं, 10 मिनट बचे हैं। वो सोचता है पहले 2 मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुन लेता हूँ, फिर पढ़ाई करूँगा।

0: फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

अब ये मोटिवेशनल गाने सुन के हमारे कहानी के लड़के में जोश आ जाता है। वो वापस नींद ना आने के लिए आंखों पर पानी मारता है, मिरर में देखता है और खुद को कहता है, अब जब तक पूरी पढ़ाई खत्म नहीं होती तो टस से मस नहीं होगा अपनी जगह से। और वो आखिरकार पढ़ाई करने बैठ जाता है। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है। वो दोस्त का फोन उठाता है और कहता है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अब कल मिलते हैं। दोस्त इस बात पे बहुत हंसता है। दोस्त कहता है, चुपचाप आ जा नीचे, मैं खड़ा हूं। वो अपने दोस्त को ना नहीं कह पाता। वो अपने आप से कहता है, दोस्त के साथ घूम कर आता हूं, उसके बाद पढ़ाई करूंगा। अच्छे कपड़े पहनकर परफ्यूम लगाकर निकल पड़ता है बाहर। घर के बाहर निकलने से पहले अपने आप को वो मिरर में देखता है, पर इस बार अपने खुद के रिफ्लेक्शन के साथ ही आंख नहीं मिला पाता।

0: आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लड़के की जिसके बड़े बड़े सपने हैं। उसे ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है पर पढ़ाई नहीं हो पा रही। कब से प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है। जब भी पढ़ाई करने का समय आता है ब्रेक ले लेता है और कहता है इस ब्रेक के बाद काम करूँगा, पर वो ब्रेक ख़त्म ही नहीं होता। वो काम को टाले जा रहा है बार बार। पढ़ाई खाना खाने के बाद करता हूँ, फिर खाना खाते वक्त जो शो वो देख रहा था वो शो ख़त्म होने के बाद पढ़ाई करता हूँ, फिर बीच में मोटिवेशन के लिए दो मोटिवेशनल गाने सुन के पढ़ाई करता हूँ। तब तक दोस्त का कॉल आ जाता है, वो घूमने के लिए बुला रहा है, तो पढ़ाई होगी कब? दोस्तों के साथ घूमने फिरने के बाद जब वो घर जाने लगता है तब उसे याद आता है अब दिन ख़त्म होने की कगार पर है और मैंने पढ़ाई करना अब तक शुरू भी नहीं किया। उसको नाराज़ देख उसका दोस्त उससे पूछता है, भाई तुझे हुआ क्या है, ऐसे मुंह क्यों लटकाया है? वो लड़का बोलता है, तेरी पढ़ाई हो गई, कल असाइनमेंट सबमिट करनी है वरना टीचर डांटेंगी। दोस्त कहता है, मेरी असाइनमेंट तो पूरी हो गई। पहले मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, पर काम को अवॉइड करते रहता तो पूरा दिन ख़त्म हो जाता, पर मेरा काम नहीं। कभी कभी आपको कोई चीज़ मोटिवेट नहीं करती काम करने के लिए, तभी डिसिप्लिन ही

आपके काम आएगा। डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मोटिवेशन, प्रेरणा से ज्यादा जरूरी ही अनुशासन है। अब ऐसे मुंह लटका के मत बैठ, अभी भी वक्त है, जा सोने से पहले अपनी असाइनमेंट पूरी कर ले। वो घर जाता है, पढ़ाई शुरू करता है। बीच बीच में उसे टाल मटोल करने का, काम को टाल के एक ब्रेक लेने का मन करता है, पर उसे दोस्त की एक लाइन याद आती है, डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मोटिवेशन, प्रेरणा से ज्यादा जरूरी अनुशासन है। आधी रात हो जाती है, मगर वो असाइनमेंट पूरी करने के बाद ही सोता है सुकून के साथ। सोने से पहले वो आईने में खुद को देखता है। अब वो खुद से आंखें मिला पा रहा है। खुद से आईने में आंख मिलाकर वो प्राउडली कहता है, प्रेरणा से ज्यादा जरूरी अनुशासन है।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में 12:15 हो रहे हैं। सुनते हैं आज के समाचार। राजधानी मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में भारी वर्षा हो रही है। पिछले दो दिन से चल रहे बारिश के दौर में मुंबई पुणे रेल तथा महामार्ग पर भूस्खलन की वजह से यातायात प्रभावित हुई है। मुंबई पुणे चलने वाली कई गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्थिति की समीक्षा की और जल्द से जल्द परिचालन

संचालन बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इस मार्ग पर राज्य परिवहन निगम के बसों की आवाजाही अगली सूचना मिलने तक स्थगित रहेगी। मुंबई शहर तथा उपनगरों में लगातार तीसरे दिन बारिश का दौर जारी है। पश्चिम रेल के उपनगरी मार्गों पर पानी जमा हो जाने से यातायात प्रभावित हो गई है। राज्य के सभी तटीय जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपील की है कि जरूरत न होने पर सफर ना करें। वर्षा स्थिति के कारण राज्य विधानसभा का कामकाज आज स्थगित कर दिया गया है। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। यह हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। देश में वाहनों की खुदरा बिक्री जून में सालाना आधार पर 21.3% बढ़कर 25,57,234 इकाई हो गई। वाहन विक्रेता संघ फाड़ा ने ये जानकारी दी। देश में वाहनों की खुदरा बिक्री जून 2025 में 20,58,996 इकाई रही थी।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्व। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। दोस्तों, बारिश का मौसम है। कभी सोचा है, बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं होती, एक एहसास होती है। हर इंसान बारिश को अपने तरीके से जीता है। किसी के लिए बारिश रोमांस है, किसी के लिए बचपन, और किसी के लिए सिर्फ एक गर्म चाय और एक कप और खिड़की के बाहर गिरती बूंदे। वैसे अगर मुझे पूछा जाए तो बारिश का सबसे सुकून भरा पल शायद वही होता है जब बाहर जोर की बारिश हो रही हो, रसोई से पकौड़ों की खुशबू आ रही हो, हाथ में अदरक वाली गर्म चाय हो और बैकग्राउंड में बज रहे हों एफएम रेनबो के प्यारे प्यारे गीत। म्यूजिक कैफे सेगमेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। उस वक्त लगता है कि दुनिया की सारी भागदौड़ थोड़ी देर के लिए रुक गई है। बस बूंदे अभी अपनी धुन बजा रही होती हैं और गाने दिल की। अगर आप ही इस वक्त चाय की चुस्कियों के साथ बारिश का मजा ले रहे हैं तो ये अगला गाना आपके नाम है।

0: आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: एक महत्त्वाची सूचना। भारतीय हवामान विभागाने मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी अतिवृष्टीचा इशारा जारी केला असून ताशी 80 ते 90 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवली आहे। या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी मुंबईतील सर्व खासगी कार्यालयातील कर्मचारी

दोस्तों, बारिश की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये उम्र नहीं देखती, बस यादें बना देती है। और बचपन की एक याद तो लगभग हम सबके पास होती है, स्कूल का पीटी पीरियड। ग्राउंड में फुटबॉल या क्रिकेट चल रहा है, सब पसीने से भीगे हुए हैं और अचानक काले बादल आते हैं। पहली बूंद गिरती है, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरा ग्राउंड बारिश में भीग जाता है। उस दिन किसी को गोल या मैच याद नहीं रहता, याद रहती है मिट्टी की खुशबू, कपड़ों पर लगे कीचड़ के दाग और दोस्तों के साथ की वो बेपरवाह हंसी। शायद इसीलिए बचपन इतना खूबसूरत लगता है, क्योंकि उस वक्त बारिश से बचने की नहीं, उसमें जी भर के भीगने की जल्दी होती है। आइए इस बचपन की यादों को फिर से महसूस करते हैं इस अगले गाने के साथ।

क्यों बचपन याद आया कि नहीं? दोस्तों, कौन से गाने आपको बारिश में सुनना अच्छा लगता है? मुझे व्हाट्सएप पर आप बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। फिर से सुनिए, व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। हमारा म्यूज़िक कैफ़े का सफ़र यही ख़त्म होने वाला है दोस्तों। इसके बाद हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT उमंग, वो सुनेंगे। और उसके बाद ठीक 1 बजे हम सुनेंगे मराठी समाचार, और 1:05 के बाद शुरू होगा नया सेगमेंट हिट एंड हॉट, जहां मैं आपके पसंदीदा गाने प्ले करूंगा। उन गानों के पीछे के किस्से कहानियां मुझे ज़रूर बताएं व्हाट्सएप पे। चलिए हमारा नया प्रोग्राम सुनते हैं।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारत

0: वर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है?
0: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूँ आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
2: इस

0: अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, और इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे अपने श्रोताओं की ओर से कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है,
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है। दूसरी जो चीज

0: रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती
1: है।
0: जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहें। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, तो क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है,
1: जी,
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना, हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं उनकी भी चीजें

0: शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, तो बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है। एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है।
1: जी,
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है, और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
1: जी,
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई

0: करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं
1: जी।
0: जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ होती है,
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया
1: प्रयास
0: वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ होता है,
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी,
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम है या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: प्रोत्साहित करें।
0: इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
1: जी,
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल पे भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8-4-4-0-6-3-2 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-4-4-1-6 ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्व और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 दिल से दिल तक। बहुत ही बेहतरीन फरमाइश, बहुत ही बेहतरीन गाना कर्ज फिल्म का, मेरे उम्र के नौजवानों। इस गाने की फरमाइश की थी अजय साखरे जी ने इंदौर से। चलिए सुनते हैं अगला गाना।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना, बेहतरीन फरमाइश। ये फरमाइश की थी अकोला से विजेंद्र घटोल जी ने। चलिए अगला गाना सुनते हैं।
1: डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सूझता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: बहुत ही बेहतरीन फरमाइश। ये गाना था सरफरोश मूवी का और फरमाइश थी पुणे से राकेश माथुर जी की। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

क्या खूबसूरत एहसास है ना। कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो हमें किसी पुरानी याद तक ले जाते हैं। किशोर दा का चलते चलते भी उन्हीं गीतों में से एक है, और बारिश के मौसम में तो इसका सुकून और भी गहरा लगता है। बहुत ही बेहतरीन फरमाइश, खूबसूरत गाना। इस गाने की फरमाइश की थी प्रमोद चिंचलकर जी ने, अमरी अकोला से। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

कुछ गाने आप सुनते हो, कुछ गाने आप महसूस करते हो। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। इस गाने की फरमाइश की थी जस्सी परिवार ने, हसविंदर चिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ने। गाओ नथाना पंजाब से। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

की डोली में आई झिल मिलाती जुगनू की बारात। सबके हो

कुछ गाने आप सिर्फ सुनते हो और कुछ गाने महसूस करते हो और कुछ गाने कहानियां बयां करते हैं। ये कला का अद्भुत आविष्कार है। इस गाने की फरमाइश की थी मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। बहुत ही बेहतरीन फरमाइश, खूबसूरत गाना। चलिए सुनते हैं हिट एंड हॉट सेगमेंट का आखिरी गाना।

0: देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति

0: उद्यमिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
0: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: जगन्नाथ तकानेन।
4: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों

0: के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जगन्नाथ चकानन।
2: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
2: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
2: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

साडी दिली शंभर रुपयांची।

जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ नाचने, हिंदुस्तान के साथ गाने आ गया है डॉक्टर निखिल शास ने। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। तो आइए, बारिश का सुहाना मौसम है तो कुछ रोमांटिक गीत और यादों से भरे गीत आज हम सुनेंगे लव यू जिंदगी कार्यक्रम में। ये मुंबई है मेरी जान, तो आइए हमारे जान की कुछ बातें सुन ले।

जी हाँ दोस्तों, लव यू जिंदगी है और कार्यक्रम का नाम, और हम भी आपसे लव करते हैं। तो भगवान जब देता है दोस्तों, तो छप्पड़ फार के देता है, या फिर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, ऐसे संदेश हमारे दोस्तों के आ रहे हैं। हम पिछले कार्यक्रम में प्रतीक्षा कर रहे थे कि बरसात कब आएगी, और मैं घर जाते जाते ही रिमझिम बरसात शुरू हो गई थी। पिछले सोमवार की बात कर रहा हूँ मैं, और आज देखिए माहौल, देखिए सब जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और हमारे जो दोस्त हैं लोनावड़ा खंडाला से, जगन्नाथ केदारे, उनका भी संदेश आया है कि बहुत वर्षा हो रही है वहाँ, और चाय का मज़ा ले रहे हैं। शुभदा भी चाय, अदरक वाली चाय पी रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी चाय कॉफ़ी का कुछ बंदोबस्त कर लेता हूँ। और जगन्नाथ केदारे बोल रहे हैं कि साथ में उन्होंने पूरी और छोले के भी मज़े ले रहे हैं, तो जी हाँ एंजॉय कीजिए बहुत। खिड़की खोल के बारिश भी देखिए, स्टे सेफ और एंजॉय मानसून। Happy monsoon to you all, to all our listeners. आपके दिल में रहना है और बारिश में भी रहना है, कुछ बारिश के बातें करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, बरसात में अगर हम किसी का इंतज़ार अगर कर रहे हो तो फीलिंग क्या होती? इंतज़ार के बारे में बातें करेंगी, पर आज बहुत वर्षा हो रही है तो किसी का ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी से जल्दी घर चले जाइए। वैसे हमारे दोस्त हमें चाय भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर, और ढेर सारी शुभकामनाएं भी है। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जी हाँ, किशोर नाइक कहिए, प्रणव शिंदे कहिए, पंकज मोहड़ कहिए, फिरोज सिंगनपुरिया और विजेंद्र घाटोल लिखते हैं कि उनके यहाँ बारिश अकोला में फिलहाल तो नहीं है। राजेंद्र परमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से, हमारे दोस्त अजय साखरे हैं, सुरेश पाटिल, अविनाश पाटिल, शुभदा भी है, श्रीधरन है, बालचंद्रन है और अंजलि कुलकर्णी भी है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आइए अगला ट्रैक एंजॉय करते हैं। और बरसात में अगर आप किसी का इंतज़ार हो तो वो माहौल कैसा होगा, थोड़ा सा उसके बारे में हमें संदेश दीजिए। या क्या कभी आपने दादर स्टेशन पे किसी के लिए इंतज़ार किया है कि कोई आ रहा है, आपको भी वैसे लेट हो रहा है घर जाने पर कोई खास व्यक्ति के लिए आप रुके हैं, तो घड़ी में कितने बजे है वो मायने नहीं रखता, तो ज़िंदगी की ये जो दो पल है वो आप उस खास दोस्त के साथ बिताना चाहते हैं, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या वो इंतज़ार कैसा है? जी हाँ, हमें बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। दिल की पतंग क्या कहती है, उसके तरफ भी ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ढील देते हैं उससे भी।

दोस्तों हम हैं ना आपके साथ एफएम रेनबो आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल जो है म्यूजिकली योर्स और आप सभी के संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। और हमारी जो दोस्त है मीरा डिचोलकर, मीरा श्रीधर डिचोलकर लिखती है, आज उनका वर्क फ्रॉम होम था तो और फिलहाल वो टावर में शिफ्ट हो गई है तो 17th फ्लोर में है तो वहाँ से बारिश का नज़ारा कुछ और है, जो ठंडी हवाएं आती है तो उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। और दिन भर उनका चाय चाय ही चल रहा है क्योंकि मौसम इतना सुहाना है, बरसात जो हो रही है और बालकनी से जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा है। और भी हमारे जुड़ी है ब्रुनई से हमारी दोस्त पूनम जुड़ी है, मुंबई मानसून को वो मिस कर रही है। दोस्तों आपको बताना है ब्रुनई देश है, वो कहाँ है मैप में जरा जाके ढूंढो, थोड़ा R&D करो और गेट बैक टू मी, मुझे बताओ। और स्पेशली पूनम ब्रुनई से जो है मुंबई की है और मुंबई का वड़ा पाव भजी चाय मिस कर रही है, मैं भी मिस कर रहा हूँ। तो नहीं, भजी कल मैंने खाई थी एंजॉय और चाय तो चालू ही रहते, भुट्टा भी मिस कर रहे हैं। तो जी हाँ, हमारी शुभकामनाएं कि वहाँ ब्रुनई में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और भी कई सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेंजामिन भाईंदर से जुड़ चुके हैं, भंडारा से दिलेश जुड़ चुके हैं, अविनाश जाधव जुड़ चुके हैं, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महफिल जम चुकी है हमारी। तो आइए और एंजॉय करते हैं, ये हंसी वादियां भी एंजॉय करते हैं। जी हाँ, रोज रोज ऐसा माहौल नहीं होता, तो आइए इस पल को जी लेते हैं। AR रहमान का संगीत, SPB की आवाज, सुरीली आवाज और साथ है चित्रा, बहुत ही बेहद प्यारा सा गीत। ब्रुनई के बारे में मत भूलना, कहाँ है मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8657661071। यस पूनम, वी आर लिसनिंग टू यू।

जी हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बरसात में हम चलते चलते या फिर जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि डीम लाइट हो जाती है। अक्सर क्रिकेट में भी हम देखते हैं कि खेल रुक जाता है। तो कभी कभी हम इंतज़ार की भी बात कर रहे थे, इंतज़ार के बारे में भी बात करेंगे, और ब्रुनेई के बारे में पूछा था तो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। बोर्निया द्वीप के तट पर है ब्रुनेई, ये आइसलैंड है वैसे, और वहाँ से अभी हमें संदेश आया था तो विषय जो है ब्रुनेई के पास चला गया। जी हाँ, ज़िंदगी में भी कभी कभी हमारी जो चीज़ें उसको ढील हमें देनी चाहिए। हम लोग बहुत बार ऐसे हो जाता है कि चीज़ें पकड़ के रखते हैं, तो जी नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हमारी जो पतंग है उसे ढील देनी चाहिए। तो जी हाँ, पंकज मोहोड़ ने, बाद में किशोर नाइक ने

सही जवाब दिया है। और जी हाँ पूनम, हमें बताइए सही है या नहीं। तो जी हाँ, मलेशिया और दक्षिण चीन के सागर से घिरा हुआ ये देश है और दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित है। तो जी हाँ, और भी बातें करेंगे, साथ ही मैंने आपसे कुछ अपडेट्स भी हैं। हमारे जो दोस्त हैं वो पंकज मोहड़ेरे, कि अब तक जो है पिछले हफ्ते वहाँ बारिश अच्छी हुई थी, पिछले 2 दिन से बारिश वहाँ नहीं हो रही है। तो ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ की थोड़ी बारिश जो ज़्यादा हो रही है वो थोड़ी हम आगे भेज सकते हैं। और रोज़ा फिल्म का और एक बेहतरीन ट्रैक हम सुनने वाले, क्योंकि उसमें इतना प्यारा संगीत दिया है, तो क्यों ना एंजॉय किया जाए। रहमान साहब का संगीत है, आइए एंजॉय करते हैं। और आशा करते हैं सभी, भारत के सभी जगह में, विश्व में जो बारिश की कमी है, पानी की कमी है, वहाँ पानी चला जाए। हाँ, पसायदान, वैसे संत ज्ञानेश्वर का एक पसायदान है, तो विश्व के लिए शांति के लिए प्रार्थना है, उसे भी याद करते हैं। आइए और सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ, आशा करते हैं इंतज़ार का जो समय होता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंतज़ार ये जो है ना वो एक अहम हिस्सा रहता है। क्योंकि बैंक में जाए या फिर रेलवे का टिकट खरीदने जाए या फिर लिफ्ट के अंदर जाने के लिए भी, या एग्ज़ाम हॉल में कहिए, मॉल में कहिए, जाने के लिए आपको कतार में खड़ा रहना पड़ता है और वेट करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आप ये जो इंतज़ार की घड़ियां हैं वो कैसे बिताते हैं? जी हाँ, व्हाट्सएप कीजिए हमें 8657661071 पर, यानी 8657661071 पर। क्या करते हैं, मतलब अक्सर हम बोर होते हैं वेटिंग करते समय, पर हमारे दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है तो कुछ बेहतरीन, क्योंकि मुंबई में हम जुगाड़ करते तो ढेर सारी चीज़ें हम वेटिंग टाइम में बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो करते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ हमें आइडियाज़ मिलते हैं क्या, क्योंकि ये वेटिंग टाइम का सदुपयोग भी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुंबई में हम जानते हैं कि जगह, इवन लोकल ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो कैसे आइडियाज़ लगा कि हमारा जो बैग है वो हमारा बोझ हम हल्का कर देते हैं। तो ये जो समय की बचत कैसे करते हैं, या फिर ये वेटिंग वाला स्पैन का आप क्या करते हो, इसके बारे में हमें बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और क्या ये इंतज़ार की घड़ियाँ भी हम जीते हैं या नहीं, इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है। तो आइए दो पल खुद के साथ भी हम बिताते हैं।

के बारे में बात कर रहे हैं और देखते देखते समय जो है आगे बढ़ता जा रहा है, साथ हमें भी लेके जा रहा है। तो हमारी दोस्त सुनीता व्यवहारे वरई कोड़ीवाड़ा से उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि चाय के साथ गर्मा गर्म कांदा भजी वो खा रहे हैं। तो जी हाँ, मेरे भी मुंह में जो है पानी छूट रहा है। तो कोई बात नहीं, मेरी याद निकाल कर आप खा लेना तो मुझ तक पहुंच जाएगा। और भी कई सारे संदेश हम तक पहुंचे हैं। माटुंगा से हसमुख है हमारे दोस्त श्रीधरन बालचंद्रन, कह रहे बहुत एंजॉय कर रहे हैं प्लेलिस्ट। फिरोज सिंगनपुरिया ने पाव भाजी का फोटो भेजा है, तो क्या करूँ, सब फेवरेट चीज़ें और उसकी फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। और फिरोज सिंगनपुरिया लिखते हैं कि जब वो इंतज़ार करते होते हैं तो वो अपनी शायरी की जो किताब है वो पढ़ते हैं या कुछ लिखते हैं उसमें। तो और ढेर सारे संदेश आए हैं जिसमें ऐसा लिखा है कि मोबाइल्स पे क्या अपडेट आ रहा है, क्या न्यूज़ है, उसके बारे में भी चर्चा होती है। साथ में एक हमारे दोस्त है, वो लिखते हैं कि जब भी समय मिलता है तब वो भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते हैं या फिर कोई स्तोत्र का पठन करते हैं। तो जी हाँ, बहुत ही इंटेलिजेंट यूज़ है किताब पढ़ना, अभी अभी हमने पढ़ा। और कुछ हमारे दोस्त हैं, वो लिखते हैं कि वो आसपास क्या चल रहा है उसका भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, कि मतलब अगर कतार में खड़े हैं तो दूसरी कतार ज़्यादा तेज़ जा रही है या स्लो जा रही है, तो बदलना चाहिए लाइन या वही, या फिर थोड़ा बहुत आसपास के जो लोग हैं उनसे शिकवे शिकायत या फिर क्या चल रहा है यार, कुछ बातें करते हैं। तो जी हाँ, आप क्या करते हैं इंतज़ार के समय में, क्योंकि इंतज़ार जो है वो तो ज़िंदगी में हम किसी न किसी का तो इंतज़ार करते हैं, चाहे वो हो कोई खास व्यक्ति हो, चाहे बॉस का भी प्रतीक्षा होती है या फिर छोटे बच्चे माँ का इंतज़ार करते हैं। तो वैसे इंतज़ार बहुत कॉमन है। तो वैसे मैं भी भजी का, कांदा भजी का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जले पे थोड़ा नमक छिड़का है तो जिया जल रहा है मेरा भी। तो आइए वही फील वाला गीत सुनते हैं।

जी दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में 5:55 होने ही लगे हैं, होने ही वाले हैं। और आप सभी के संदेश आ रहे हैं कि इंतज़ार करते करते कभी कभी चाय कॉफ़ी पी लेते हैं। हमारे जो भाईंदर से बेंजामिन है, उन्होंने टोमेटो सूप का फ़ोटो भेजा है। नूतन बर्वे ने जो है ठेचे के साथ वो वड़ा पाव गर्मा गर्म खा रहे हैं। और रजनीकांत पाटिल वाडवन से लिखते हैं कि जब वो वेट करते हैं तो वो FM रेनबो सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। तो जी हाँ, इंतज़ार ख़त्म हुआ। अभी हमारा जो कार्यक्रम है लव यू ज़िंदगी, वो आखिरी कगार पर है। कुछ आखिरी पल बचे हैं, तो क्यों ना इसे एंजॉय किया जाए। साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत है, तो आइए सुनते हैं ये गीत। थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट, बहुत ही प्यारा संगीत है। ठीक 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 6:15 में लेकर आऊँगा हमारा प्यारा और पसंदीदा कार्यक्रम अंदाज़े बयां। तो आओ ना, ये गीत हम एंजॉय करते हैं और साथ में मानसून जो है वो भी एंजॉय करते हैं। बहुत ही प्यारा गीत, बहुत दिनों बाद सुना मैंने, सोचा ये आपके लिए लेके आऊं।

दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम अंदाज़े बयां में। और आपका अंदाज़ कैसा है जी हाँ, हमें ज़रूर बताइए। और आसपास का माहौल कैसा है ये भी हमें बताइए। और जनरली बारिश का आनंद लेने के समय आपका अंदाज़ कौन सा होता है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत आज चर्चा करेंगे, क्योंकि माहौल

घर इस रेनबो क्लॉक में बजे हैं 6:30 और हमारा कार्यक्रम जारी है अंदाज़े बयां। दोस्तों आज थोड़ी बहुत ऐसी बात की जाए कि हर एक जन जो है, हर एक हम में से जो दोस्त हैं, उन्हें बारिश को महसूस करना बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादातर हमारे दोस्तों को। तो पर हर एक का टाइप अलग होता है, हर एक का फंडा अलग होता है। तो आपको कुछ सुझाव देता हूँ या फिर आपको कुछ ऑप्शंस देता हूँ, आप कौन से ऑप्शन से बारिश का मज़ा जो है, बारिश का आनंद जो है वो ज़्यादा उठा सकते हैं। नंबर एक कि चलते या फिर पैदल बारिश में भीग कर आप जो है बारिश का मज़ा ज़्यादा ले सकते हैं। ऑप्शन बी है बाइक पे सवार होकर या बाइक राइडिंग करके बारिश में आपको ज़्यादा बारिश का आनंद मिलता है। ये ऑप्शन सी कार से या फिर फोर व्हीलर से गाने सुनते सुनते एफएम रेनबो के साथ जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है। या फिर ऑप्शन डी कि लोकल ट्रेन में खिड़की में बैठकर बाहर के नज़ारे देखते हुए, क्योंकि लोकल ट्रेन भी हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो लोकल ट्रेन में खिड़की के पास या फिर डोर से जो है बाहर के नज़ारे देखते हुए, या फिर ऑप्शन ई जी, हमारे पास ऑप्शन चार ही नहीं, हमारा चैनल का नाम एफएम रेनबो है तो 7 ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ, तो इससे भी कोई और ऑप्शंस हो सकते हैं, पर 7 में से आपको कौन सा पसंद है वो देखते हैं। तो अगला ऑप्शन है लोकल ट्रेन के बाद एक्सप्रेस ट्रेन। जी हाँ, एक्सप्रेस ट्रेन से भी हम

वर्षा का आनंद लेते हैं। कभी कभी जो है ट्रेन रुक जाती है और आसपास का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन होता है, स्पेशली जब हम मुंबई पुणे ट्रेन से जा रहे हो या फिर मुंबई कोंकण के साइड जाते हो, मुंबई मडगांव गोवा के साइड में या फिर मैंगलोर के साइड में जाते हो, तो और स्पेशली जो है विस्टाडोम कोचेस आ गए हैं जिससे हमारा जो आनंद है वो दुगना हो जाता है। जी हाँ, विस्टाडोम कोचेस हम लोग को जो है मुंबई गोवा के सफ़र में, जनशताब्दी और तेजस में है, और पुणे अगर जाना है तो दक्कन की रानी, जी हाँ डेक्कन क्वीन में और डेक्कन एक्सप्रेस में भी विस्टाडोम कोच है, या फिर वंदे भारत जो हमारी प्यारी एक्सप्रेस है उससे भी हम बारिश का लुफ्त उठा सकते हैं और हमारा ज़िंदगी का सफ़र जारी रख सकते हैं। और अगला ऑप्शन ऐसा है कि प्लेन से या फिर यानी हवाई जहाज से या फिर क्रूज से सफ़र करना आपको अच्छा लगे, आपने किया हो क्रूज से सफ़र या ना, पर भी कौन सा ऑप्शन बारिश को एंजॉय करने के लिए सबसे सही और प्यारा आपको लगता है, आप हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, यानी 8657661071। आपके जवाब का, आपके संदेश का इंतज़ार है, तो चलिए साथ में कदम उठाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बातें चल रही है बारिश की और आपके अंदाज की। जी हाँ, बारिश में आप आनंद कैसा कैसे महसूस करना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, उसके बारे में हमारी बातचीत जारी है। और वैसे मैंने आपको 7 ऑप्शन दिए क्योंकि हमारा FM रेनबो चैनल है। तो सुनीता व्यवहारे वरई कोईवाड़ा से, उन्होंने कहा है कि उन्हें पैदल जो है बारिश पैदल चलते चलते बारिश का लुफ्त उठाना, आनंद उठाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वर्षा जो है, बारिश की बूंदें हैं वो जो सीधे हमारे हम पर बरसती है, तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। हमारे दोस्त कुर्ला से आयाश चौधरी कहते हैं कि उन्हें कार से, 4-व्हीलर से, ऑप्शन सी जो है, जी हाँ ऑप्शन सी है कि कार से लॉन्ग ड्राइव में जाना बहुत पसंद है, और साथ में FM रेनबो हो, 90s के गीत जारी हो और बस माहौल ही बन जाता है। और अकोला से हमारे जो दोस्त है विजेंद्र घाटोल, वो ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, यानी 2-व्हीलर से बारिश का मज़ा लेना उन्हें बहुत मज़ा आता है। और हमारे जो दोस्त है फिरोज सिंगनपुरिया, वो लिखते हैं खास बाइक पे भी उनको मज़ा आता है, और कोई ख़ास जो व्यक्ति है वो साथ है और बाइक पे हम जा रहे हैं तो और भी मज़ा आता है। और दोस्तों, मुझे द ग्रेट कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का एक जो सेंटेंस है, एक लाइन याद आती है कि बारिश का सीज़न उन्हें ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बारिश में जब हम रोते हैं तो किसी को पता नहीं चलता कि हमारे इमोशंस क्या है। तो जी हाँ, ये भी एक लेयर हो सकता है, एक छेड़ हो सकती है बारिश में, बारिश का आनंद उठाने की, इमोशंस जो है हमारे बाहर निकल आते हैं जब हम बरसात में भीगते हैं। तो आइए किशोरदा की आवाज़ में उसी अंदाज का एक गीत।

जी हाँ, हम में से कई हमारे दोस्त भीग रहे होंगे। यानी कभी कभी हम अपनी मर्जी से नहीं भीगते, वर्षा इतनी ज़ोरों से होती है कि घर जाते जाते रिक्शा में कहिए, ट्रेन में कहिए, किसी और का रेनकोट हमें लगने से कहिए या छाते से पानी गिरने से कहिए, हम भीग ही जाते हैं। और बारिश से बचना वैसे मुंबई में तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ, और जो हमारी चर्चा जारी थी, गपशप जारी थी कि बारिश का मज़ा हम कैसे लेते लेते हैं और कैसे लेने में हमें मज़ा आता है, तो जी हाँ, ऑप्शन बी भी बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, भाईंदर से हमारे जो दोस्त है बेंजामिन, वो कहते हैं कि टू व्हीलर से बारिश का मज़ा लेने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। वैसे अकोला से हमारे जो दोस्त है विजेंद्र घाटो, इनका भी यही कहना है। और राकेश माथुर जो हमारे पुणे के दोस्त है, उन्हें ऑप्शन सी के साथ यानी फोर व्हीलर में लॉन्ग ड्राइव में जाना बहुत पसंद है। दीपाली शिरोडकर हमारी जो दोस्त है, उन्हें भी जो कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है। साथ ही में वीरापुर से हमारे जो दोस्त है दत्तात्रेय आड़त, उन्हें भी बारिश में सेफ्टी के साथ, सही स्पीड के साथ जो है आराम से बारिश का मज़ा लेने में बहुत मज़ा आता है। और हमारे जो दोस्त है पंकज मुहोड़ लिखते हैं कि हल्की बारिश में भीगते हुए कई बार घूमते फिरते पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है, और खेत में भीगते हुए काम करने में भी उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है वैसे ए बी सी। जी हाँ, आपको बता दूं कि ऑप्शंस है ए कि चलते पैदल पैदल चलते चलते जो है बारिश का आनंद लेना अच्छा लगता है, ऑप्शन बी है बाइक पर टू व्हीलर पर, ऑप्शन सी फोर व्हीलर लॉन्ग ड्राइव पर, ऑप्शन डी है कि लोकल ट्रेन से खिड़की से जो है बारिश का जो बूंदे आती हैं, वैसे हम कहते हैं खिड़की बंद कर दो खिड़की बंद कर दो, पर कभी कभी हम खिड़की बंद नहीं करते और वो जो बूंदे हैं उसे शरीर नहीं आत्मा तक जाने का हम इंतज़ार करते हैं और भीगते हुए सफ़र करते हैं। कभी कभी जो हमारे साथी जो यात्री होते हैं उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है, पर जी हाँ, ये भी एक अंदाज़ होता है बारिश का लुत्फ़ उठाने का। और आगे बढ़ते हुए ऑप्शन ई हमने कहा था कि एक्सप्रेस ट्रेन से यानी लंबी रेस की जो ट्रेनें होती है, जी हाँ, जैसे वंदे भारत कही है या फिर विस्टाडोम कोचेस, बहुत ही हैपनिंग है दोस्तों। तो ज़रूर अगर जब मौका मिले मुंबई पुणे हम कर सकते हैं या फिर कोंकण जा सकते हैं, कोंकण तो जाना बनता ही है दोस्तों। और बरसात का सीजन मतलब यानी स्वर्ग है, और विस्टाडोम कोच से कहिए या फिर हमारे साधारण सीट से भी अगर या फिर साधारण एक्सप्रेस से भी हमने अगर यात्रा की तो बहुत ही प्यारे नज़ारे होते हैं।

स्पेशली जब हम कोंकण, गोवा और मंगलूर की तरफ जाते हैं तो। और अगला ऑप्शन हमने दिया है कि प्लेन से, जी हाँ, कि बादलों के ऊपर से हम जाते हैं और वर्षा को चकमा देने का की कोशिश करते हैं, पर उसमें भी बहुत मज़ा है। या फिर समुंदर के बीच से, जी हाँ, बीचों बीच से समुंदर को चीरते हुए तूफानों के साथ, जी हाँ, हवाओं का मज़ा उठाते हुए क्रूज से जाना आप पसंद करेंगे। तो जी हाँ, व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। वैसे पैदल चलने में भी मज़ा है जब आपका कोई दोस्त साथ में हो, और कोल्ड कॉफ़ी का भी हम एंजॉय कर सकते हैं उस दोस्त के साथ। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं या फिर मलीन ड्राइव पे चलते चलते कहीं दूर निकल जाएं।

जी हाँ दोस्तों, हम सब एक ही है। रेनबो सात रंग जरूर है, पर इंद्रधनुष तो एक ही है। जी हाँ, प्रकाश एक ही है। जब वो प्रिज्म में से जाता है तब जो है, या फिर पानी की बूंदों में से जब जाता है तो उसके सात रंग आते हैं। वैसे ही हम सभी के अंदाज है। और कई सारे संदेश आ रहे हैं। प्रणव शिंदे लिखते हैं कि जो है ट्रेन में, चलती ट्रेन में जो है बारिश का मज़ा लेना अच्छा लगता है। जब भी हल्की या बारिश थोड़ी सी कम होनी चाहिए तो और मज़ा आता है। सुरेश काशीनाथ पाटिल हमें लिखती है कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं बारिश। साथ में प्रकाश शिंदे लिखते हैं कि पैदल बारिश में जो है चलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही विनोद कुमार सानप बोरखेड़ी से हमारे दोस्त है, वो कहते हैं कि पैदल चलते चलते स्पेशली खेतों में जो है, और साथ में जो है झुणका भाकर हो, कांदा हो, तो जी हाँ कुछ मज़ा ही कुछ और है ठेसे के संग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने वीडियो भी भेजा है वैसे खेतों का, और साथ FM रेनबो सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हमारे जो दोस्त है तेलंगाना से, शंकराचार्य, वो लिखते हैं कि खंडाला में, जी हाँ मंकी हिल में जो है, उन्हें बारिश में वो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही अलग ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा वो लिखते हैं। और भी कई सारे संदेश है, और एन्जॉय कर रहे हैं कार्यक्रम। जी हाँ, मैं भी एन्जॉय कर रहा हूँ आपका संग। तो आइए, ज़िंदगी में और क्या चाहिए, हाँ एक दूसरे का साथ चाहिए। देवानंद साहब का गाना है, जी हाँ कहता नहीं हूँ, हम सुन ही लेते हैं किशोरदा की आवाज़ में। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही।

0: पल भर के लिए।
1: दोस्तों ठीक 7 बजे हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर हमारा जो लिसनर्स चॉइस कार्यक्रम है हम तुम वो जारी होगा। तो आइए कुछ ही पलों में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे प्यारे और पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम हैं। और जी हाँ, फरमाइशों के फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम है और यहाँ मैं बैक सीट पे चला जाता हूँ और ड्राइविंग सीट पे आप होते हैं, यानी आपने जो चुने हुए गीत है, आपने सोचे हुए गीत हम इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो हमने गीत सुना तो उत्तर प्रदेश से दुल्हापुर से मुरादाबाद

से मोहम्मद फरमान और मोहम्मद सलमान के साथ इस गीत की फरमाइश दीपाली शिरोडकर ने की थी। और भी कई सारे गीतों की फरमाइश है, लाइन अप हो रहे हैं। तो आइए प्रमोद चिंचोड़कर की फरमाइश का अगला गीत सुनते हैं, और साथ ही इसकी फरमाइश इंदौर से हमारे जो दोस्त हैं अजय साखरे, इन्होंने भी की है। तो आइए हाफ गर्लफ्रेंड से ये गीत हम सुनते हैं। गीत तो आपने पहचान ही लिया होगा।

दोस्तों हम तुम कार्यक्रम जारी है मेरे यानी आरजे डॉक्टर निखिल विद्या हरेंद्र शास्त्री के संग, और खबरों का सिलसिला भी जारी है। और जब खबरों की बात हम करते हैं तो अखबार हमारे सामने आता है। तो दोस्तों अखबार में कौन सा ऐसा पन्ना है जो आप पहले पढ़ने को लेते हो, और कौन सा ऐसा पन्ना है जो

0: बहुत सारी फरमाइशें आ रहे हैं, तो थोड़ा सा फिल्टर कर रहा हूँ मैं और अच्छे से जो फूलों की माला सजा रहा हूँ। तो ठीक है, नाम इधर उधर कभी कभी हो सकते हैं, पर याद प्यार आपके साथ जो है वो बना हुआ है,
1: जब से देखी है
0: मोहित चौहान की आवाज में अगला फिल्म।
1: झलक तुम्हारी,
0: फिल्म के बारे में कुछ खास बात है, 14 साल हुए हैं इस फिल्म को रिलीज हुए बोल बच्चन फिल्म से अगले, प्रणव शिंदे ने इसकी फरमाइश की है। आइए एंजॉय करते हैं ये गीत।

दोस्तों कार्यक्रम जारी है हम तुम और बातें चल रही है खबरों के बारे में और अखबार के बारे में। तो अखबार का कौन सा पन्ना आप पहले पढ़ते हो और कौन सा पन्ना आप आखिर में पढ़ते हो या पढ़ते ही नहीं? तो हमारे जो दोस्त है फिरोज सिंगनपुरिया वो लिखते हैं कि पेज थ्री वाला जो पेज है वो फिल्मी जगत से भरा हुआ जो इन्फॉर्मेशन आती है अपडेट्स आती है वो पेज वो पहले पढ़ते हैं। और भी कई सारे संदेश भी आ रहे हैं। और दीपाली शिरोडकर लिखती है कि मराठी न्यूज़पेपर

पर पड़ती है। और साथ में अगर मैं मेरी भी बात करूं तो मैं तीन अखबार पढ़ता हूं, मतलब मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, इन तीनों भाषाओं के जो है पढ़ता हूं। और सबसे पहले तो हर हिंदुस्तानी की तरह जो हाथ जो है स्पोर्ट्स पेज पे चला जाता है, और सबसे आखिर में पॉलिटिक्स और ये फाइनेंस रिलेटेड जो बातें होती है, न्यूज़ होती है, तो वो पढ़ता हूँ। और दीपाली शिरोडकर लिखती है कि मराठी न्यूज़पेपर पढ़ती है, और साथ में सबसे पहले एडिटोरियल जो है संपादकीय जिसे हम कहते हैं वो सबसे पहले पढ़ती है, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जी हाँ, अग्रलेख जिसे हम कहते हैं, संपादकीय कहते हैं, या फिर एडिटोरियल, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और हमारी भाषा में भी उससे सुधार होता है। तो आइए, खबरों की बात चलती रहेगी, खबरें भी हम लेते रहेंगे, साथ ही साथ बेहतरीन संगीत जिसके लिए हम जाने जाते हैं, आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल है जो है म्यूजिकली योर्स। और अगला गीत की जो फरमाइश है फिरोज सिंगन पुरिया ने की है, साथ में किसने इस फिल्म की गीत की, हाँ हितेंद्र दास, इन्होंने भी यही फरमाइश की है। तो आइए बेहतरीन गीत सुनते हैं।

0: the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me.
1: प्रमोद सिंसोलकर लिखते हैं, मराठी अखबार पढ़ते हैं और अखबार का पहला पन्ना उन्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और राशि भविष्य वाला जो पन्ना है वो भी पढ़ने में उनको मज़ा आता है। हमारे जो दोस्त हैं प्रकाश शिंदे लिखते हैं बॉलीवुड के बारे में, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य के बारे में जहाँ इन्फॉर्मेशन आती है वो पन्ना पढ़ना उन्हें बहुत मज़ा आता है और भी कई सारे संदेश हैं। तो गीतों का दौर भी हम जारी रखते हैं। श्री क्षेत्र पंढरपुर, जी हाँ, अभी वारी निकली है। हमारा महाराष्ट्र का जो दैवत है विठ्ठल रखमाई माऊली, तो श्री क्षेत्र से फरमाइश आई है। तो जी हाँ, डर फिल्म का गीत उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, दत्ता केदार इनका नाम है। तो आइए सुनते हैं डर फिल्म से अगला गीत उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में। और भी कई सारे संदेश हैं तो इंतज़ार कीजिए।

जी हाँ, मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे सामने हैं। जी हाँ, एक दूसरे को देख नहीं सकते पर एक दूसरे की आवाज़, एक दूसरे के दिल की बात हम सुन सकते हैं। तो ढेर सारी फरमाइशें आई हैं और ढेर सारे संदेश भी आए हैं। अखबार के बारे में हम बातें कर रहे हैं, कौन सा पेज पहले पढ़ते हैं और कौन सा नहीं पढ़ते या अवॉइड करते हैं। तो हमारे बेंगलुरु से जो दोस्त है गोपाल राव, उन्होंने वो लिखते हैं कि एडिटोरियल पेज और लेटर टू एडिटर, ये जो पन्ना होता है वो पहले, सबसे पहले पढ़ते हैं और हम सभी की तरह स्पोर्ट्स पेज या फिर वो कॉलम पढ़ते हैं और निगेटिव जो न्यूज़ है वो अक्सर वो अवॉइड करते हैं क्योंकि दिन भर वो फिर वो उसके बारे में सोचना पड़ता है या फिर ख्याल आते हैं। तो बहुत ही अच्छी सोच है और ढेर सारे संदेश हैं। तो मैं सबसे सबके नाम आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि इन्होंने हमें संदेश भेजा है। तो गीत सबके हम सुनवा नहीं सकते क्योंकि समय को सीमा है, पर हमारा जो प्रेम है आपके प्रति उसको बिल्कुल सीमा नहीं है। तो आप संदेश भेजते जाइए, रिक्वेस्ट सॉन्ग्स भेजते जाइए और प्ले हो जाएगा क्योंकि पूरे दिल से मांगी हुई बात जो है वो अक्सर पूरी हो ही जाती है। पूरी नहीं हुई तब तक रुकना नहीं है। जी हाँ, सुनील गायकवाड़ भाऊ, पंकज मोहोड़ और राकेश माथुर हमारे दोस्त हैं, अरविंद कुलकर्णी, इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, मुकेश कश्यप ने, हीरामणि वर्मा ने, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी दिग्दर्शन और कविता, विक्रम आठौले और तेलंगाना से शंकराचार्य, इन्होंने सभी ने संदेश भेजी है। तो कोशिश करते हैं क्योंकि

लगभग 18 मिनट हमारे हाथ में है और कुछ गीत बहुत बड़े हैं तो 6-7 मिनट की है, तो उसमें काफ़ी वक्त चला जाता है, पर संगीत और उस गीत का आनंद तो हमें लेना है क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। तो आइए एंजॉय करते हैं कुछ गीत। और आप में से कितने जन जो है गुलाबी अखबार पढ़ता है, यानी पिंक न्यूज़पेपर? जी हाँ, मैं आर्थिक जगत की जो घटनाएं जिसमें आती हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ने में भी मुझे मज़ा आता है। वैसे हमारा जो रोज़ का अखबार होता है उसका जो अर्थ जगत के जुड़ा हुआ पन्ना है मैं अक्सर नहीं पढ़ता, पर ये पिंक वाला कुछ कलर अट्रैक्ट करता है और काफ़ी सीरियस लुक होता है पर मज़ा आता है। तो आप भी बताइए कौन सा अखबार पढ़ने में आपको मज़ा आता है। तो आखिरी के शायद 4 या 5 गीत हो सकते हैं, पर कोई बात नहीं, पूरी दिल से हम सुनेंगे, पूरी दिल से इसका आनंद उठाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और दिल की बात चल रही थी तो दिल फिल्म से जो गीत है उसे सुनते हैं, राकेश माथुर पूना से। और भी कई सारे हमारे दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की है, आप सभी के नाम हमारे दिल से आपके दिल तक ये गीत, क्योंकि आपको अच्छी नींद आनी चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, FM रेनबो की घड़ी में 7:50 हो चले हैं, यानी मेरे जाने का समय हो चला है। ठीक 8 बजे रॉक विद द चॉक ये इंग्लिश सेगमेंट का कार्यक्रम लेके आरजे एंजेला स्टूडियो में आ चुकी है। तो जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होता है, बेहतरीन अंग्रेज़ी गीत होते हैं। सो वेस्टर्न म्यूज़िक का भी आनंद लेना न भूलिए। तो मुझे यानी आरजे डॉक्टर निखिल विद्या हरिंद्र शास्त्री को दीजिए इजाज़त। हिंदुस्तान के साथ नाचने, हिंदुस्तान के साथ गाने, फिर आएगा डॉक्टर निखिल शास्त्री। तो कुछ एक दो रिक्वेस्ट है, वो आपके लिए प्ले करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा

0: दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
2: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
2: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
6: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका

0: देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
5: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shondipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
4: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
6: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि।

0: निजी वाणी आकाशवाणी।
1: आ गई याद शाम ढलते ही, बुझ गया दिल चराग जलते ही, खुल गए शहर गम के दरवाजे एक जरा सी हवा के चलते ही। आइए महसूस करें इसी एहसास को खूबसूरत गजलों के साथ। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: और जब बात तलत महमूद की हो तो कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत मखमली आवाज़ के मालिक थे तलत महमूद साहब। आवाज़ में लर्जा था लेकिन दिल में उतर जाती थी बात, और ये आवाज़ आज भी दिल को भा जाती है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम रंगे महफिल में कुछ ऐसी ही खूबसूरत गज़लें आप तक पहुंचाएं जो यकीनन फिल्मों के लिए तो अहम थी ही, लेकिन आज भी उतनी ही मकबूल हैं, उतनी ही दिलकश हैं जितनी

करोड़ों दिलों तक पहुंचाया है। मोहब्बत का इजहार हो, जुदाई का दर्द हो, इंतजार की कसक या फिर जिंदगी का फलसफा ही क्यों ना हो, हर रंग को गजल ने बड़ी ही नफासत के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। और जब जब हम इन गजलों को सुनते हैं तो दिल करता है कि बस हम इन्हें सुने जाएं और बस ये सीधे दिल में उतरती चली जाएं।

यूं ही कोई मिल गया था सरी राह चलते चलते, ये चराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते चलते। वाकई बहुत ही खूबसूरत कलाम और लता मंगेशकर की आवाज़ यकीनन बहुत ही खूबसूरत, बेहद दिलकश। जब बात दिलकश आवाज़ों की आती है तो एक नाम हमें और याद आता है, जिसका अभी मैंने जिक्र भी किया था तलत महमूद साहब के साथ, मुबारक बेगम। जी हाँ, गज़लों की बात हो, खूबसूरत आवाज़ों का जिक्र हो और मुबारक बेगम का जिक्र ना आए तो बात कुछ अधूरी रह जाती है। उनकी आवाज़ में बेहद सादगी का एहसास होता है, दर्द और अपनापन तो था ही, और यूं लगता था कि जैसे, बल्कि लगता था क्या, आवाज़ तो आज भी हमारे बीच मौजूद है। जी हाँ, सीधा दिल पर असर होता है उनका हर एक कलाम और उनकी आवाज़। उन्होंने अपनी जो एक गज़ल गायकी का एक फ़न था, उससे साबित किया है कि गज़ल सिर्फ सुरों की नहीं बल्कि एहसास की भी एक अलग तरीके की फनकारी हुआ करती है। तो चलिए इसी फ़न से और इसी आवाज़ से महसूस होते हैं।

गज़लों की बात हो और ये गज़ल ना सुनी जाए मुबारक बेगम की आवाज़ में, तो वाकई कुछ अधूरापन सा लगता है। इस आवाज़ में नज़ाकत भी है और एक खामोश सी कशिश का भी एहसास होता है। और इस गज़ल की बात करें तो इस गज़ल में मोहब्बत भी है, जुदाई का जज्बा भी है और तन्हाई, उसके तो कहने ही क्या। वाकई अगर फिल्मों में गज़लों का सफ़र उस पर बात की जाए तो ये सफ़र बेहद पुराना है और उतना ही पुराना है जितना हिंदी सिनेमा का एक सुनहरा दौर। गज़ल ने पर्दे पर सिर्फ सुरों का ही साथ नहीं दिया बल्कि अल्फाज को एक ऐसी रूह बख्शी कि वो आज भी हम सब के दिलों में हमेशा यादों की तरह महकती रहती है। तो चलिए इन्हीं गज़लों को सुनते हैं एक और खूबसूरत से सफ़र पर। साथ ही रहिएगा, हमारे प्रोग्राम है रंगी महफ़िल।

इनको सुना जाता रहेगा। तो बात चल रही है आपके साथ उन गज़लों की जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया है, और ये सिलसिला लगातार आगे जारी रहा और सिलसिला आज भी नहीं रुका है। आज भी मुसलसल गज़लों को फिल्मों में जगह दी जाती रही है। चलिए, इस दौर के बाद भी बहुत सारी गज़लें ऐसी हैं जो हमेशा याद रखी जाती रहेंगी। ऐसा करते हैं, एक और गज़ल सुनते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और अनवर को सुनते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। और रंगे महफिल में हम बात कर रहे हैं जज्बात की, एहसासात की, यानी उन गज़लों की जो हमारे दिलों में जिंदा हैं।

वाकई जनाब इस आवाज़ को तो क्या कहें, ये आवाज़ तो दिलों में सांसें लेती है। ये आवाज़ हमारे जज्बात, हमारे एहसासात की एक ख़ास अक्कासी करती है। और ये खूबसूरत आवाज़ें अक्सर, बल्कि कहना चाहिए बरबस ही याद आ जाती हैं। मखमली आवाज़ हो, दर्द में डूबी अदायगी हो, या फिर एक अलग गहरा अंदाज़। सादगी की बात करें या फिर खनकती हुई आवाज़ की बात करें, इन सभी ने गज़ल को घर घर तक पहुंचाया है। और फिल्मी गज़लों ने गायकी को एक अलग ही ऊंचाई दी है। तो चलिए एक गज़ल और सुनते हैं, और उसके बाद मैं हूँ आपके साथ, कहीं जाइएगा नहीं। प्रोग्राम रंगे महफ़िल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर।

अलग ही जगह बनाई है। और बात जब हम करते हैं फिल्म उमराव जान की, तो जनाब उमराव जान बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसमें आशा भोसले साहिबा ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से गज़लों को अमर कर दिया। मैं यहाँ पुरानी जो उमराव जान थी रेखा वाली उसकी बात कर रही हूँ। और इसके बाद एक और फिल्म आई थी उसमें अलका याग्निक की आवाज़ थी। तो चलिए ऐसा करते हैं, एक छोटी सी बानगी सुनते हैं फिल्म उमराव जान की आशा भोसले साहिबा की आवाज़ में, और उसके बाद कुछ और बातें आपके साथ।

तो देखा आपने, ये भी एक शाहकार है शहरयार साहब का कलाम। और आज भी इस फिल्म की गज़लें हमें बेहद पसंद आती हैं, और जब बात उमराव जान की हो रही है और बात हो रही है फिल्मी गज़लों की, तो धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा। नई उमराव जान आई तो उसमें एक अलग ही अंदाज़ हमें नज़र आया। ज़रा ये भी सुनिए।

तो देखा आपने, अलका याग्निक भी गज़ल से अछूती नहीं रही। उन्होंने भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में गज़लों को एक नया मकाम दिया है। और आप सब प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। रितु हमारे साथ हैं दिल्ली से, मनीष हमारे साथ हैं, और प्रोग्राम को बहुत उनको अच्छा लग रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। और राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से हमारे साथ लिखते हैं कि दिल्ली में बहुत गर्मी है, अभी आया हूँ। तो चलिए, आप अपने घर आ गए हैं और थोड़ा आपको राहत का ज़रूर एहसास होगा। और आपने आते ही रेनबो सुनना शुरू किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। सौरभ तिवारी हैं हमारे साथ हरदोई से, लिखते हैं कि सफ़र कितना भी लंबा हो मुस्कुरा कर तय कीजिए, रास्ते भी अपने लगने लगते हैं, अब दिल से जिया कीजिए। रेनबो के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यू आर एन आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटर, कूल बैलेंस्ड। ओके, हमारे साथ केपी तोमर जी, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया केपी तोमर जी आपका। और बहुत हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि आप एक एक लफ्ज़ बहुत गौर से सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक पहुँचाते हैं, बहुत शुक्रिया। और हम आपसे अब 13 तारीख को ज़रूर मिलें, तो हमारे साथ जरूर रहिएगा। और इसके अलावा हमारे साथ प्रेमचंद प्रेमी जी भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और गज़लें सुनाने के लिए। और जगजीत जी को भी बिल्कुल आपने सही कहा है जनाब, हम किसी को भी नहीं भूल सकते, हमारी लिस्ट में सभी शामिल हैं। सुरजीत जब्बल हैं फरीदाबाद से, तो बहुत शुक्रिया। तो ये प्रोग्राम का जो सिलसिला है जनाब, ऐसे ही चलता रहा, और ख़ासतौर से जब गज़लों की बात आती है तो गज़लों में इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब हम ज़िक्र करते हैं जगजीत सिंह साहब का, तो फिल्मी गज़लों में जगजीत सिंह ने भी अपनी एक अलग न सिर्फ पहचान बनाई, बल्कि कहा यह जाता है कि गज़लों को हर एक दिल तक पहुंचाने का एक बहुत ही आसान तरीक़ा जगजीत साहब ने इख्तियार किया। और वाकई लोगों ने जो गज़ल को नहीं पहचान रहे थे, उन्होंने गज़ल को समझा, गज़ल को जाना और उसे एक अलग ही मकाम दिया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिलसिला रुका नहीं है, लगातार हिंदी फिल्मों में गज़लों का सिलसिला जारी है। तो चलिए, चलते चलते अब आपको एक खूबसूरत सी गज़ल हम ज़रूर सुनवाएंगे। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि ये आवाज़ है जगजीत सिंह साहब की। और जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि मुस्कुराहटों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जगह दीजिए, ख़ास तौर पर अपने चेहरे पर रखिए मुस्कुराहट, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। तो बस हंसिए, मुस्कुराइए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फ़िलहाल एक खूबसूरत गज़ल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा, और मोहब्बतों के जो चिराग हैं दोस्त, उन्हें हमेशा ऐसे ही जलाते रहिएगा, रोशन रखिएगा। गुड नाइट, शब खैर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। हमारी अगली शुरुआत करने से पहले आइए सुनते हैं FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के हजूर साहिब के

बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 12:30 बजे राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा और जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम का। जी हाँ, प्रोग्राम जीरो आर शो लेकर आपके साथ हाजिर हूँ मैं हेमा। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।
1: इश्क छुपता

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली।

0: दुकु दुकु।
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी ची नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: कहानियाँ सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब सुनते हैं अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रोवोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। 1993 बैच के IPS अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। विशाखापट्टनम तट के पास नौका पलटने की घटना के बाद एक मछुआरे को बचाया गया। लापता 6 मछुआरों की तलाश जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है 1:02:40। हमारे अगला प्रोग्राम सुहानी रात, जुड़े रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक 8 ट्रैक्स के साथ।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल से तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय 2 बजे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। 1993 बैच के IPS अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। विशाखापत्तनम तट के पास नौका पलटने की घटना के बाद एक मछुआरे को बचाया गया। लापता 6 मछुआरों की तलाश की जा रही है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम भुलाए ना बनेगा, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

0: ख्याल से तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बहरीन में शाहद हमद बिन ईसा अल खलीफा के से मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। विशाखापत्तनम तट के पास नौका पलटने की घटना के बाद एक मछुआरे को बचाया गया। लापता 6 मछुआरों की तलाश की जा रही है। और जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। एफएम रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ, समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का। तो यहीं जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: तेरा जहर बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त।
1: लाले क्या बताऊं यार, वो जिस जमीन पे पैर रखती है वो जमीन महकने लगती है, और अगर वो अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दे तो ये कुदरत महकने लगती है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ब्यूटी, आपका क्या ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
0: पॉइंट नोटेड मिस्टर
1: रोहित।
0: मिस्टर

नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। विशाखापत्तनम तट के पास नौका पलटने की घटना के बाद एक मछुआरे को बचाया गया। लापता 6 मछुआरों की तलाश की जा रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।